0: बहुत गलती की है, हमें भी लगता है कि उनके सपने थे, हमने उनके सपने चूर चूर कर दिए. बिकॉज ऑफ स्केटबोर्डिंग आई रियली इंजॉइंग माई लाइफ. सो थैंक यू सो मच स्केटबोर्डिंग एंड थैंक यू सो मच गर्ल स्केट इंडिया फॉर सपोर्टिंग. या
1: I'm gonna feed this leaf to this sacred, beautiful animal. There you go. This is like the best place on earth.
2: We found a bank spot at an Indian wedding hall. At first we thought we were gonna get kicked out, but people love skateboarding here.